जब था आपके लोग कितने शरण करवाएगा जी साढ़े गुरुद्वारा साहब के हजूरी रागी श्री दरबार साहब जी के हजूरी रागी भाई साहब भाई इंद्रजीत सिंह जी खालसा बेनती करांगा भाई साहब नो कि से ध्यान इन्हों के जो राग जिन्हें जिन्होंने कीर्तन करना है राग बिलावल ते रामकली सो बेनती है भाई साहब नो शुरू करेंगे जी वाहेगुरु जी का खालसा

दुख दारू सुख रोग भया जा सुखता न हुई तू करता करना मैं नाही जा हौ करी न हुई बलिहारी कुदरत वसेया तेरा अंत न जाई लखिया रहा जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला।

सकल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे, से तुदनो गावन जो तुद पावन, रते तेरे भगत रसाले, होर केते तुदनो गावन से मैं चित न आवन।

जाए न जासी, रचना जिन रचाई, रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी, माया जिन उपाई, कर कर देखै कीता आपना, ज्यों तिस दी वड्याई, जो तिस पावै सोई करसी, फिर हुक्म न करना जाई, सो पात साहु साहपत साहिब, नानक रहन रजाई, आसा महला पहला, सुन वड्डा आखै सब कोए, केवड़ वड्डा डीठा हुए, कीमत पाए न कहया जाए, कहने वाले तेरे रहे समाए।

खसम विसार है ते कम जात, नानक नावै बाज सनात। राग गुजरी महला चौथा, हर के जन सतगुर सतपुरखा। बिनो करो गुरपास, हम कीरे किरम सतगुर सरनाई।

मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रहरास रहाओ। हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास। हर हर नाम मिले तृप्ता सह, मिल संगत गुण परगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सत संगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम परगास।

शैल पत्थर मह जंतु उपाय ताका रिजक आगे कर धरिया मेरे माधु जी सत संगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहाओ जनन पिता लोक सुत बनता कोए न किस की तरिया सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर काहे मन भाव करिया ऊडे ऊडावै सह कोसा तिस पाछे बचरे छरिया तिन कवन खलावै कवन जुगावै मन मह सिमरन करिया सब निदान दस अष्ट सिदान ठाकुर कर तल धरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत न पारा वरिया।

दुख विसारण हारा। हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू कट कट अंतर सर्व निरंतर जी, हर एको पुरख समाणा। एक दाते एक पेखारी जी, सब तेरे चोज विडाणा। तू आपे दाता आपे भुगता जी, हाओ तुद बिन अवर न जाना।

वह जो सेवह तुद जी जन नानक तिन कुरबाना हर त्यावह हर त्यावह तुद जी से जन जुग मह सुखवासी से मुकत भये जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फांसी जिन निरभाओ जिन हर निरभाओ।

पढ़े बहुसिमृत शास्त्र जी, कर क्रिया खट कर्म करंता, से भगत भले जन।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाज बेनती चाओ पई, हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सबै तुम कावहु, आप हाथ दै मोहे बचावहु।

पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन शत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास निवरी है। पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जू करे हो रक्षा। राख ले हो महिराकन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा।

जिने आप सवारी शिवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पल मोह वध कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंच

आए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने घट घट के पट पट की जाने जब उदकर्ख करा कर तारा प्रजा तरत तब देहे अपारा जब आकर्ख कर

भिन्न भिन्न तुह तेती तुमरा लखा न जाए पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एकै रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कहि भूपा अंडज जेरज सेतज कीनी पुत भुज खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा हवै बैठा कहूं सिमट भयो शंकर कैठा शिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचम पव आद जुगाद स्वरूप स्वयं पव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख वार सिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रणकाता जे अस तुझ तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुख तहवै मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्यै है ताकि काल निकट नह ऐ है रच्छा हुए ताहि सब काला दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे निहरे हो ताके ताप तनक मह हरे हो रिद्ध सिद्ध कर्मु सब होई दुष्ट छाह छव सकै न कोई।

साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर सात सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटहु जिस दिया इह वडियाइया कह नानक सुनहु संतहु शब्द धरहु प्यारू साचा नाम मेरा आधारू वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै घर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत दिवस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन को से नाम हर कह लागे कह नानक तह सुख हुआ तित घर अनहद वाजे अनद सुनहु वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल विसूरे

को पुंचै तिसका हुए पुधारो। एह वस्त तजी नह जाई नित नित रख उतहारो। तम संसार चरण लग करियै सब नानक ब्रह्म पसारू। श्लोक महला पंजवां।

जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।

सत्संग जी। बोलो जी, वाहेगुरु वाहेगुरु। एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वारसी वधि पाची दसवीं प्रथम भगवती समर कहे गुरु नानक लई प्याए फिर अंकित गुरते अमरदास रामदास वह सहाय अर्जुन हर गोविंद सिमरन श्री हर राय श्री हर कृष्ण की आई सब दुख जाए तेग बहादुर सिमर है कारण उन्होंने आवता है सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साहब थाई हुए सहाय दसा पाची ने पुत्र आत्मक रूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब ने पहाड़ दर के घर से बोलो जी वाहे गुरु। आप जी दे पांच प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्त हटियां जपियां तपियां जिन्हें नाम जपया वन छकया देई चलाई तेग वाहे देख डिड़की तना प्यारे ते प्यारे की कमाई का ध्यान करके बोलो जी वाहे गुरु। जिन्ना सिंगा सिंगणियां धर्म ये सी दिते बंद बंद कटवाए कोपड़ियां लवाइया चरखियां चले आड़े में चलाए गए गुरुद्वारे सेवा से कुर्बानियां की धर्म नहीं आ रहा किसी ने केसा सुरक्षा संघ लगाया तेना की कमाई का ध्यान करके बोलो जी वाहेगुरु। पंजा तख्त गुरुद्वार का ध्यान करके बोलो जी वाहेगुरु। प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे नाम चेताव है चित आवन का सदका सर्व सुखो है जहां जहां गुरु खालसा साहब तहर चरियात देख देख की फतेह वृत की पहज पंथ की जीत श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोलबाले बोलो जी वाहेगुरु। सिखा नु सिखी दान केस दान रैत दान विवेक दान विशाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब दर्शन स्नान चौकियां चंडे बूंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहेगुरु। सिखा दा मन नीवा मत उची मत फत के राखे आप वाहेगुरु। गुरु जी मेनु आज पंच सदा से आज दता दियो गुरुद्वारा ननकाणा साहब पंजा साहब होर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हों तो आदि के पंथ में छोड़िया गया है उन्होंने खुले दर्शन के दार से सेवा समाज का दान अपने खालसा जी ने बख्शो ये न्योटिया की ओट गुरु ने आसरिया आसरे गुरु धन धन गुरु का दतार जियो दोए कर जोड़ करो अरदास खुद पावे ताने रास हे गुरु आज जी आपके चरण कामना अरदास आपकी बख्शिश हो आपके चरण पितर गुरबाणी सुखमनी साहब संपूर्ण पाठ दता ऐस वे संध्या समा जान के आपके चरण जोरदार रहरास पाठ कि कृपा करो भूया भुलन चुकों की माफी बख्शो पढ़ी हुई बाणी सोध के सचखंड प्रवान करो बाणी का भाव सारिया संगत निशानी के बाद करो जी अगो तो शोध से पितर बाणी चाली बार बुद्धि बख्शिश करो आज इस खुशी में आप दी बख्शिया दाता पितर कलाप शादी देगा त्यार कर हाथ दतार आप दी भोग लाओ शीत प्रसाद सार संकत रखना लायक हो जो जी सके स्वास स्वास आज आप पितर नाम जा बख्शिश करो दतार दुखा कलेचा रोगों का नाश करो सुखों का प्रकाश करो देश प्रदेश रखा बख्शिश करो जी की मनवाज आप दख्शिया दातों जो लग रहे टुट सवार प्रबंध कर लेदार आपके चरणों सेवा कर रहे सारे टहरिया सिंगा सिंगणियों तंदुरुस्ती बख्शो चाढ़ी कला बख्शो तो सदा ही इस तरह अपने चरणों सेवा की भावना बख्शे वार्ता करो की मनवाज कृपा करो जी अमृत वेल को लैके दर से आई सब संगतों के हाजिर दर प्रवान करो घड़िया ने खिलाओ संगतों का दर से फिर फिर पेटा प्रवान शुभकामना पूर्ण करो जी धन धन गुरु ग्रंथ सार ग्रंथ सार पिता जीओ आपके चरण कामना दरदास दिता जी आज बख्शी सेवा करो दो बख्शे ने अज आप डर के सेवा है पाई साहब भाई ओंकार सिंह जी उन्हें सेवा वाले जिन्हें जन्मदिन की खुशी में अच्छे परिवार की कंध सुख शांति चढ़ी कला वास्ते परिवार के सारे कार्यों की संपूर्णता वास्ते परिवार के सारे कार्य राज करने वास्ते बेनती करते हैं तार परिवार को बेहत माया आपके चरणा भेटा की प्रवान दार बख्शी करते भाई ओंकार सिंह तंदुरुस्त बख्शो लंबी आयु बख्शो अगर सिक्की नाम दर्द करता इस तरह अपने चरण सदा सेवा की भावना में कृपालता करो सेवा की दाज बख्शी करो सर मेहर करो मेहर प्रयास सारे परिवार के सिर से रखो अगर सारे परिवार में सदा तंदुरुस्त सुख शांति चढ़ी कला करो परिवार में एकता स्वागत आज बख्शी करके सत दाज बख्शो दार कृपा करो सत्य पातशाह जी परिवार में सदा चंद कला बख्शी करनी मेहर प्रयास दार मेरे प्रयास परिवार के सिर रखो सेवकों के सारे वहदे कार सार की चरण दरवाजे बनाओ सेवक परिवार के सारे कार राज करो परिवार दिन शुभकामना असमान पूरी कर रही दर्दियों की लाजपत रखो हर प्रकार की रक्षा बच्चे बात करो जी गुरु की बनवाई मेरा भी करो इंतजार जी हो खालसा पंथ सेवकों एकता विभाग प्याज की बख्शी करके सत दाल बख्शो चैनल जोड़ो गुरमण का प्यार बख्शो हर मैदान दुआन फतेह बख्शों की वार्ता करो जी दुखार जी हो दूर दराज कार बैठी लाइक श्रवण करी है सारी संगत जहाज के घड़ियां लेके लाओ तारण बख्शी की संगत बख्शे
ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਆਨਲਾਈਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਹਰ ਸੰਗਤਾਂ ਮਾਇਆ ਭੇਟਾ ਕਰਜਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਬੱਚਾ ਸਭ ਦੀ ਕਮਾਈਆਂ ਸਫਲ ਕਰੋ, ਘਰ ਜਵਾਬ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸਰਬੱਤ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਜੀ, ਕਾਰਨ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰਿਆ ਹੋ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਭੁਲਾ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਬਿਹਤਰ ਗੁਮਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਉਪਰੰਤ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਕਥਾ ਜੀ ਬਰਮਤਾ ਵਾਸਤੇ ਆਗਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਸਵਾਲ ਕੇ ਚਰਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਣਾਓ, ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਪਿਤ ਸੇਵਾ ਲਾਲੀ ਕਮਾਦਤਾ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਾਈ ਅਕਾਲ ਕੇ ਤਵੀ ਚਲਾਇਓ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ, ਗੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮਹਿਲ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਗੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ ਪਾਰ ਹੋਏ ਸਾ ਮਿਲੇਗੇ, ਬਜੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਜੜੇ ਸੋ ਤਰੇ ਪਾ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾ ਖੰਡਾ।

पंक्तियां तुहानू गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी कैसी भावना है महाराज दी बाणी दी एक एक अखर एक एक पंक्ति सतगुरु अपना अंदर दा सुभा अंदर दी भावना काश ऐसी भावना साडी भी बन जाए। हालांकि सारा कुछ होंदिया होया गुरु नानक दा रूप ने गुरु नानक दे घर दे मालक ने अकाल पुरख दा रूप है पर फिर भी अपने मन नू इंज भावना बना के कहिंदे ने भगती तो बगैर वड्डे वड्डे दावे करन वाले डुब गए। अद्धी अद्धी दुनिया ते राज करन वाले सिकंदर वर्गे औरंगजेब वर्गे रावण वर्गे जिन्हां कोल किसी गल की कमी नहीं सी जप तप कीता भी पर हंकार मैं मेरी नहीं सारा कुछ स्वा बना के रख दिता। सच्चे पातशाह जी की ये पावन पंक्तियां एक बारी सारे रल के आपां भी गाइए। ओए मना सोचा विचारां दी गुत्थी ही मन दा रूप है। कई बारी बंदा बैठा परिवार विच है अंदर खलबली मची हुई है बैठा गुरुद्वारे विच है पर मन चुप ना होया बैठा कीर्तन विच है पर मन उड़ारियां मारदा फिरता है। सच्ची प्यारियो कबीर साहब ने बड़े कमाल दे बचन कीते कहंदे ने कंचन स्यों पाईए नहीं तोल सोने चांदी हीरे जवाहरात नाल नहीं मन दे राम लिया है। इस मन नू मैं गुरु अगे फेटा कीता मस्तक मथा टेकण दा भी यही मकसद है। महाराज मैनू अपनी मत दे दिओ इह अज तों बाद इह मत तुहानू टेक नहीं ते वड्डे वड्डे हो के चले गए। सतपुरशां दे बचन ने कहंदे ने धरती ते इन्ने जी मौजूद ने जिन्ने मिट्टी विच मिल गए। मात लोक है मौत दा खूह है आपां भी उसे क्यों चां। गुरु अर्जन देव जी ने बड़े कमाल दे बचन कीते जिथे कोई भी नहीं जा सकदा तिथे तू समर्थ जिथे पर एक बख्शिश है उथे तेरी रख अग्नि उदर माहे निरंकार दा नाम जिथे किसी दी पहुंच नहीं उथे महाराज दे नाम दी ए बख्शिश नाल जाएगी। कह दिओ सारा

0: सारी संगत प्यार सहत आखो जी
1: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
0: फिर आखो जी
1: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
0: परम सम्मान योग पतत पावन दया सिंध कृपा निध रूहानियत दे भंडार गुरु गरीब निवाज सचे पातशाह जी। हां जी, गुरु गरीब निवाज सचे पातशाह जी, जुग जुग अटल दसां पातशाहियां दी जग दी जोत दयालु कृपालु मेहरबान आद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। आद गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन बारगाह विच छत्र छाया हेठ सतगुरु जी दी साजी अते निवाजी होई गुरु प्यारी गुरु सवारी अति सत्कार योग साध संगत जी सर्वत्र माई भाई गुरसिख बहुत ही वड्डियां भागां वाले हो गुरु की अपार अपार अपार बख्शिश प्राप्त हुंदी है चिम चिम वरस अमृत धारा गुरु की अमृत बाणी दी दात रोजाना प्राप्त हुंदी है। सतगुरु जी दयालु कृपालु मेहरबान ने गुरु सवारी संगत जी सतगुरु जी दे अंदर किन्नी क दया है। श्री मान भाई साहब भाई गुरुदास साहब जी ने एक कबित बड़ा प्यारा कलम बंद किया है। कहिंदे ने कोई अंब दी मिठास जड़ी है बहुत ज्यादा हुंदी है दुसहरी अंब हो गए और बिलकुल रसिया पक्का हो गए ते जिस वेले उन्हू चूपदा है बंदा कट्टन तो बिना उदा रस जेड़ा बहुत ज्यादा हुंदा है पर ओ रस अंब वाला कोई इमली चो लैना चाहे तो बिलकुल नहीं मिलना। आखो सतनाम श्री
1: वाहेगुरु
0: बिलकुल नहीं मिलना। बात बड़ी प्यारी है। दूसरा बोल भाई साहब भाई गुरुदास साहब जी कहिंदे ने पिता और पुत्र जाती पिता दे नाल बहुत ज्यादा स्नेह है प्यार है बहुत प्यार है बहुत प्यार है और प्यो भी बाप भी रज रज के अपने बच्चियां नू प्यार दंदा है। अगर ओ प्यार जेड़ा है पिता जी वाला बाप वाला गवांडी वाला कहे भी मैं तेरे बाप वाला प्यार तेनू दे दिया ओ कदे प्यार पड़ोसी दे कोलो नहीं मिल सकता जिन्ना मर्जी जोर ला लियो। एक बात होर भाई गुरुदास साहब जी कहिंदे ने समुंदर दे विच्चों अनेक तरह के पदार्थ मिल जाते ने हीरे जवाहर मिल जाते बहुत कुछ मिल जाता टुब्बी मारन वाला होवे अगर जे कोई कवे भी वह मैनू छप्पड़ चो मिल जाए तो वह कदे प्राप्ति नहीं होंदे। मौले धार मीह पैंदा होवे ते कोई ए प्राणी कवे भी मैं खूह दे पानी नाल प्रसन्न हो जावे तां इवें बात नहीं है मीह दा पानी तां मीह दा पानी है। भाई साहब भाई गुरुदास साहब जी कहिंदे ने संसार विच झाती मारीए 33 करोड़ देवी देवते सब सत्कार योग ने सब सत्कार योग ने वड्डिया तो वड्डे ने पर जिन्नी दया जिन्नी कृपा जिन्नी बख्शिश मेरे सतगुरु जी दे घर तो हुंदी ओनी किधरे भी नहीं हुंदी। तुसीं कहो जी उह किवें मेरे ख्याल परसों की गल है मैं लंगर च बैठा जिस वेले आसा जी की वार दा कीर्तन शुरू होया ना ते उस वेले रसीली जी आवाज नाल सत्कार योग रागी सिंह साहिबान जी भाई साहब भाई सतनाम सिंह जी की रसना तो मैं बैठा बैठा शब्द सुनी गया पिता को प्यार ना परोसी पह भाई। इन्होंने मेरे ख्याल टेक शब्द ही रखी सी ते ए शब्द जेड़ा है भाई साहब भाई गुरुदास साहब जी का कविता है कहिंदे आंब की सदर कत मिटत ना आंबली खाए पिता को प्यार ना परोसी पह पाई है सागर की निद कत पाई है तो पोखर स दिन कर सार दीप जोत ना पुजाई है। दीवा जागदा है ते कहिंदे सूरज चढ़िया होवे ते दीवा किते सूरज दी बराबरी कर सकदा ना जी ना दिन कर सार दीप जोत ना पुजाई है सागर की निद का तपाई है तपोखर सह चंदन सुभासना पलास महकाई है श्री गुर दयाल की न दया आन देव मैं जो खंड ब्रह्मांड उदय ਅਸਤ ਲੋਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਅਸਤ ਜਿੱਥੇ ਛਿਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਲਓ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਕੀ ਨਾ ਦਇਆ ਆਣ ਦੇਵ ਮੈਂ, ਜੋ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਉਹਦਾ ਅਸਤ ਲਾਓ ਧਾਈ ਹੈ। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਪਦੇ ਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ
1: ਵਾਹਿਗੁਰੂ
0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੜੋਗੇ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਗਹਿਰਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਸੁਰਤ ਟਿਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਦੌੜਦਾ ਭੱਜਦਾ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਪਾਈ ਵੱਡ ਭਾਗੇ, ਮਨ ਚਲ ਤੋ ਭਯੋ ਰੂੜਾ, ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਅਥਾਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਲ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਚਾਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਾਲਾ ਖੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁੰਜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਆਓ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੋਰ ਰਹਿਮਤ ਹੋਰ ਰਹਿਮਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਦਇਆਲਾ, ਮੋਹੇ ਦੀਨ ਕਹੋ ਰਾਖ ਲਿਆ, ਦਇਆਲੂ ਹੈ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਚਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰੇ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਾਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਜੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜੁੜ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ

0: महाराज कहते अंदर हर जन सिमरो हृदय राम, हर जन को अपदा निकट न आवे पूर्णता के काम। एक गल होर चेता रखो, जपना जरूर है मुखो पर विरले बसा लेंदे ने, मुखो हर हर सब को करे विरले हृदय वसाया। विरलिया चो तुसी बैठे हो, महाराज कहते अंतर जपना करो जी।
1: जत पाव है मोख द्वार।
0: सवाल कीता जी इस नाम नाल मिलना की है, ता गरीब निवाज कहते जित, जिस करके जित तो भाव जिस करके पाव है, पा लवेगा की मोख द्वार, तेनू मुक्ति दा दरवाजा खुल जावेगा, भाव बंधना तो मुक्त हो जावेगा, भाव जमना ते मरना मिट जावेगा। इस करके महाराज कहते ने सलोक समीप सजुज ता कैवल मोक्ष, कैवल हुंदी उहदा रूप हो जाना, उस रूप दे विच मोख विच पहुंच जावेगा, जिन्हों महाराज कहते ने प्रभ की आज्ञा आत्म हिताव जीवन मुक्त सो कहाव, तैसा हरख तैसा उस सोग सदा आनंद तै नहीं ब्योग, तैसा सुवर्ण तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी बिक खाटी, तैसा मान तैसा विमान तैसा रंक तैसा राजान, जो वरताए साई जुगत नानक ओ हो पुरख कहिया जीवन मुकत। महाराज कृपा करदे ने कहिंदे बंधना तो भाई मुक्त हो जावेगा।
1: महला तीजा
0: श्री परिवार सच्चे पातशाह जी हो।

हर तू जुड़ी ला सतगुर पुरख मिलाया बलराम जियो निरपहो पहे मन होए हौ मैं मैल गवाया बलराम जियो निर्मल पहु पाया हर गुण गाया हर वेखे राम हदूरे हर आत्म राम पसारिया स्वामी

हर गुण गाया मुख बोली हर बाणी संत जना बड़ भागी पाया हर कतिए अकथ कहानी हृदय हर हर

परस सगल निस्तारे अष्टपति मिथ्या नाही रसना परस मन में प्रीत निरंजन तरस परत्रय रूप न पेख नेत्र सादगी टहल संत संग हेत करन सुन काहू की निंदा सब ते जाने आपस को मंदा गुर प्रसाद बिखिया पर हरे मन की बाशना मन ते तरह इंद्री जित पंच दुख ते रहत नानक कूट मध्ये को ऐसा आपरस बै सुनो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न बिसन की माया ते हुए भिन्न कर्म करत हो वै नेह कर्म तिस वैष्णु का निर्मल धर्म काहू फल की इच्छा नहीं बाछै केवल भगत कीर्तन संग राचै मन तन अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल आप दृढ़ अवरा नाम जपावे नानक ओ वैष्णो परम गत पावै भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागै दुष्ट का संग मन ते बिनसै सगला भरम कर पूजै सगल पार ब्रह्म साध संग पापा मन खोवै तिस भगवती की मत उत्तम होवै भगवंत की टहल करे नित नीत मन तन अर्पै बिसन प्रीत हर के चरण हृदय बसावै नानक ऐसा भगवती भगवंत कौ पावै सो पंडित जो मन प्रबोधै राम नाम आत्म मैं सोधै राम नाम सार रस पीवै उस पंडित कै उपदेश जग जीवै हर की कथा हृदय बसावै सो पंडित फिर जौन ना आवै वेद पुराण सिमरत बूझै मूल सूखम मैं जानै असथूल चौवर नाखो दे उपदेश नानक उस पंडित कौ सदा आदेश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौवर नामै जपै को नाम जो जो जपै तिस की गत होए साध संग पावै जन कोय कर कृपा अंतर उर तारै पश प्रेत मुगद पाथर को तारै सर्व रोग का औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहु जुगत कितै न पाइय धर्म नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म जिसका मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत रामदास आत्म राम तिस नगरी आया दास दसंतन पाए तन तिन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास दरगै प्रवान अपने दास को आप कृपा करै तिस दास को सब सोजी परै सगल संग आत्म उदास ऐसी जुगत नानक रामदास प्रभ की आज्ञा आत्म हितावै जीवन मुक्त सो कहावै तैसा हरक तैसा उस सोग सदा आनंद तह नहीं वियोग तैसा सुवर्ण तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी भीख खाटी तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंक तैसा राजान जो वरताए साई जुगत नानक ओ पुरख कही है जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाओ जित जित घर राखै तैसा तिन नाओ अपे करण करावण जोग प्रभ पावै सोई फुन होग पसरेओ आप होए अनत तरंग लखि न जाहे पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दे तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता अविनाश सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक पहे निहाल सलोक उस्तत करहे अनेक जन अंत न पारावार नानक रचना प्रभ रची बहुविध अनक प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट भय तीर्थवासी कई कोट बन भ्रमै उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीसर होते कई कोट तपीसर होते कई कोट आत्म ध्यान धारै कई कोट कब काब विचारै कई कोट नवतन नाम त्यावै नानक करते का अंत न पावै है कई कोट भय अभिमानी कई कोट अंध अज्ञानी कई कोट किरपन कठोर कई कोट अभिग आत्म ने कोर कई कोट पर दर्भ कहि रहै कई कोट पर दुख ना करहै कई कोट माया श्रम माहि कई कोट प्रदेश परमाहि जित जित लावह तित तित लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोट सित जति जोगी कई कोट राजे रास भोगी कई कोट पंखी सर्प उपाय कई कोट पाथर बिरख निप जाए कई कोट पवन पाणी बैसंत्र कई कोट देश भूमंडल कई कोट सस्यर सूर नक्षत्र कई कोट देवदानव इंद्र सिर शत्र सगल समग्री अपने सूत तारै नानक जिस जिस भावै तिस तिस निस तारै
कई कूट राजस तामस सातक कई कूट वेद पुराण सिमरत अर्थशास्त्र कई कूट तीय रतन समुद्र कई कूट नाना प्रकार जंत कई कूट किए चर जीवे कई कूट गिरी मेर स्वर्ण थीवे कई कूट जख्य किन्नर पिसाच कई कूट भूत प्रेत सूकर मृगाच सब ते नेरै सब हुते दूर नानक आप अलिपत रहया भरपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक सुर्ग निवासी कई कोट जन मह जीव है मरह कई कोट बहुजो ने फिर है कई कोट बैठ ही खाहे कई कोट काल है सक पाहे कई कोट किए तनवंत कई कोट माया मह चिंत जह जह पाणा तह तह राखे नानक सब के शुप्रभ कह हाथे कई कोट भय बैरागी राम नाम संग तिन लिव लागी कई कोट प्रभ कौ खोजंते आत्म मह पार ब्रह्म लहंते कई कोट दर्शन प्रभ प्यास तिनको मिल्यो प्रभ अभिनाश कई कोट मंग है सत संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिन कौ होए आप सो प्रसन्न नानक ते जन सदा धन धन कई कोट खाणी अरखंड कई कोट आकाश ब्रह्मांड कई कोट होए अवतार कई युगत तीनों बिस्थार कई बार पसरियो पसार सदा सदा एक एक ओंकार कई कोट तीने बहु भांत प्रभ ते होए प्रभ माहे समात ताका अंत न जाने कोई आपे आप नानक प्रभ सोए कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होवत आत्म प्रगास कई कोट तत् के बेते सदा निहार है एको नेत्रे कई कोट नाम रस पीवा है अमर पै सद सद ही जीवा है कई कोट नाम गुण गाव है आत्म रस सुख सहज समाव है अपने जन को सासा सुमारी नानक ओए परमेश्वर के प्यारे सलोक करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोए नानक किस बलहारण है जल थल महियल सोए अष्टपति करण करावन करण है जोग जो तिस भावै सोई होग खिन मैं थाप उथापन हारा अंत नहीं किश पारा वारा हुक्मे तार अतार रहावै हुक्मे उपजै हुक्म समावै हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार हुक्मे अनेक रंग प्रकार कर कर देखै अपनी वडयाई नानक सब मह रहया समाई प्रभ पावै मनुख गत पावै प्रभ पावै ता पाथर तरावै प्रभ पावै बिन शास्त्री राखै प्रभ पावै ता हर गुण पाखै प्रभ पावै ता पतत उधारै आप करै आपन बिचारै दोहां सिरियां का आप स्वामी खेलै बिगसै अंतर जामी जो पावै सो कार करावै नानक दृष्टि अवर न आवै कहो मानुख ते क्या होया वै जो तिस भावै सोई करावै इसके हाथ होए ता सब किश ले जो तिस भावै सोई करे अन जानत बिख्या मैं रचै जे जानत आपन आप बचै भरमे भूला दह दिस तावै निमुख माहे चार कुंट फिर आवै कर कृपा जिस अपने भगत दे नानक ते जान नाम मिले खिन मैं नीच कीट कौराज पार ब्रह्म गरीब निवाज जा कर दृष्ट कछु न आवै तिस तत्काल दै दिस प्रगटावै जा कौ अपुनी करै बखसीस ताका लेखा न गनै जगदीस जियो पिंड सब तिस की रास घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगास अपनी बणत आप बनाई नानक जीवै देख बडाई इसका बल नाही इस हाथ करण करावन सर्ब को नाथ आज्ञाकारी बपुरा जियो जो तिस भावै सोई फुन थियो कब हूँ ऊंच नीच मैं बसै कब हूँ सोग हरख रंग हसै कब हूँ नेंद चेंद व्यवहार कब हूँ ऊब आकाश पयाल कब हूँ बेता ब्रह्म विचार नानक आप मिलावन हार कबहू निरत करै बहु पांत कबहू सोए रहै दिन रात कबहू महाक्रोध विकराल कबहू सर्ब की हो तरवाल कबहू होए बहै बड़ राजा कबहू पेखारी नीच का साजा कबहू आप कीरत में आवै कबहू भला भला कहावै ज्यों प्रभ रखै तिव ही रहै गुर प्रसाद नानक सच कहै
कबहू होए पंडित करे बखियान, कबहू मोन तहरी लावे ध्यान, कबहू तट तीरथ इशनान, कबहू सिद्ध साधक मुख ज्ञान, कबहू कीट हस्त पतंग होए जिया, अनेक जोन भर मैं परमिया, नाना रूप ज्यों स्वांगी दिखावै, ज्यों प्रभ भावै तिवै नचावै, ज्यों तिस भावै सोई होए, नानक दूजा अवर ना कोए, कबहू साध संगत इह पावै, उस अस्थान ते बाहूर ना आवै, अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस अस्थान का नहीं विनाश, मान तन नाम रते इक रंग, सदा बसै पार ब्रह्म कै संग, ज्यों जल मैं जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभ कै सद कुरबान, सलोक सुखी बसै मसकीनिया, आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया, नानक गर्भ गले अष्टपदी, जिसका अंतर राज अभिमान, सो नरक पाती होवत सुआन, जो जाने मैं जोवनवंत, सो होवत विष्टाका जंत, आपस को कर्मवंत कहावै, जन्म मरै बहु जोन परमावै, तन भूमिका जो करै गुमान, सो मूर्ख अंधा ज्ञान, कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावै, नानक इहा मुक्त आगै सुख पावै, धनवंता होए कर गरबावै, तृण समान काश संग न जावै, बहु लस्कर मानुख ऊपर करे आस, पल पीतर ताका होए विनाश, सब ते आप जाने बलवंत, खिन मैं होए जाए पसमंत, किसै ना बताए आप अहंकारी, धर्म राय तिस करे खुआरी, गुर प्रसाद जाका मिटाए अभिमान, सो जन नानक दरगै प्रवान, कोट कर्म करे हों तारे, श्रम पावै सगले बिरथारे, अनक तपस्या करे अहंकार, नरक सुरग फिर अवतार, अनेक जतन कर आत्म नहीं द्रवै, हर दरगै कौ कैसे गवै, आपस कौ जो भला कहावै, तिसे भलाई निकट न आवै, सर्व किरीन जाका मन होए, कहो नानक ताकी निर्मल सोए, जब लग जाने मुझ ते काश होए, तब इस कौ सुख नाही कोए, जब ए जाने मैं किश करता, तब लग गर्भ जोन मैं फिरता, जब तार को बैरी मीत, तब लग नहीं चलना ही चीत, जब लग मोह मगन संग माए, तब लग धर्म राय दे सजाए, प्रभ कृपा ते बंधन टूटे, गुरु प्रसाद नानक हों छूटे, सहस खटे लख को उठतावे, त्रिपत न आवे माया पाछे पावे, अनेक भोग भिख्या की करे, नह त्रिपतावे खप खप मरे, बिना संतोख नहीं को राजै, सुपन मनोरथ बिरथे सब काजै, नाम रंग सर्ब सुख होए, बड़भागी किसे प्राप्त होए, करण करावन आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप, करण करावन करने हार, इसके हाथ कहा विचार, जैसी दृष्ट करे तैसा होए, आपे आप आप प्रभ सोए, जो किश कीनो सो अपने रंग, सब ते दूर सब हूं कै संग, बूझै देखै करै बबेक, आपे एक आपे अनेक, मरे न बिनसै आवै न जाए, नानक साध ही रहा समाए, आप उपदेसै समझै आप, आपे रचिया सब कै साथ, आप कीनो अपन बिस्थार, सब कछ उसकाउ करने हार, उस ते भिन्न कहो किश होए, थान थनंतर एकै सोए, अपने चले तो आप करने हार, कौतुक करे रंग अपार, मन मैं आप मन अपने माहे, नानक कीमत कहना जाए, सत सत सत प्रभ स्वामी गुरु प्रसाद किने वखियानी, सच सच सच सब कीना कूट मदे किने बिरलै चीना, भला भला भला तेरा रूप, अत सुंदर अपार अनूप, निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी, घट घट सुने सरवन बखियानी, पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत, नाम जपै नानक मन प्रीत सलोक, संत सरण जो जन परै सो जन उदरण हार, संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार, अष्टपदी, संत कै दुखन आर जा घटै, संत कै दुखन जमते नहीं छुटै, संत कै दुखन सुख सब जाए, संत कै दुखन नरक मै पाए, संत कै दुखन मत होए मलीन, संत कै दुखन सुभा ते हीन, संत के हते को रखे न कोए, संत कै दुखन थान भ्रष्ट होए, संत कृपाल कृपा जे करै, नानक संत संग निंदक पी करै, संत के दुखन के मुख पवै, संतन के दुखन काग ज्यों लवै,
संतन कै दुख न सर्प जोन पाए, संत कै दुख न त्रिगत जोन किर माए, संतन कै दुख न कृष्णा मैं जलै, संत कै दुख न सब को शलै, संत कै दुख न तेज सब जाए, संत कै दुख न नीच नीच आए, संत दुखी का थाउ को नाहे, नानक संत पावे तां ओए पी गत पाहे, संत का निंदक महातताई, संत का निंदक खिन टिकन न पाई, संत का निंदक महाहत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राज तेहीन, संत का निंदक दुखिया अर दीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा बिजोग, संत की निंदा दुख मैं दुख, नानक संत पावे ताऊ सुखा पी होए मोख, संत का दुखी सदा पवित, संत का दुखी किसे का नहीं मित, संत के दुखी को डान लागै, संत के दुखी को सब त्यागै, संत का दुखी महांकारी, संत का दुखी सदा बिकारी, संत का दुखी जन्म मरै, संत की दुख ना सुख ते तरै, संत के दुखी को ना ही ठाओ, नानक संत पावे तां लय मिलाए, संत का दुखी अद बीच दे टूटै, संत का दुखी कतै काज न पहुँचै, संत के दुखी कौ अवर कौ ध्यान प्रमाइयै, संत के दुखी कौ ध्यान प्रमाइयै, संत का दुखी उजड़ पाइयै, संत का दुखी अंतर ते थोथा, ज्यो सास बिना मृत की लोथा, संत के दुखी की जड़ किश नाहे, अपन बीज आपे ही खाहे, संत के दुखी को अवर न रखन हार, नानक संत पावे तां लय उबार, संत का दुखी इउं बिललाए, ज्यों जल बिहून मछली तड़फड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजै, ज्यों पावक ईधन नहीं त्रापै, संत का दुखी छुटै केला, ज्यों बुआड़ ते लखे तुमाहि दुहेला, संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी साध मिथ्या कहत, किरत निंदक का तुर ही पया, नानक ज्योति सुभावै सोई थया, संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दुखी को दरगह मिले सजाए, संत का दुखी सदा सहकाइए, संत का दुखी ना मरे ना जीवाइए, संत के दुखी की पूजा ना सा, संत का दुखी उठ चले निरासा, संत के दुख न त्रष्टै कोई, जैसा भावै तैसा कोई होए, पया किरत ना मिटै कोई, नानक जाने सच्चा सोए, सब घट तिसक्यो करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभु की उस्तत करो दिन रात, तिसे त्यावो सास विरास, सब काशु वरतै तिसका किया, जैसा करे तैसा कूथिया, अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कहे विचार, जिसनु कृपा करे तिस अपन नाम दे, बड़भागी नानक जन से सलोक, तजो से अंत सुरज नौ, सिमरौ हर हर राय, एक आस हर मन रखौ, नानक दुख परम पहु जाए, अष्टपदी मानो की टेक, वृत्ति सब जान, देवन को एक है भगवान, जिसके दिए रहे अघाए, बहुर न तृष्णा लागै आए, मारे राखै एको आप, मानुख कै किछु नाहीं हाथ, तिसका हुक्म बूझ सुख होए, तिसका नाम रख कंठ परोए, सिमर सिमर सिमर प्रभु सोए, नानक बिघ्न न लागै कोए, उस्तत मन मैं कर निरंकार, कर मन मेरे सत बेउहार, निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर ले हे जियो, नैनो पेख ठाकुर का रंग, साध संग बिनसै सब संग, चरण चलो मर गोबिंद, मिटै पाप जपिए हर बिंद, कर हर करम सरवन हर कथा, हर दरगह नानक उजल मथा, बड़भागी ते जन जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाहे, राम नाम जो करह विचार, से धनवंत गनी संसार, मन तन मुख बोलै हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी, एको एक एक पछाने, ए तो उत कियो सोजी जाने, नाम संग जिसका मन मानिया, नानक तिने निरंजन जानिया, गुरप्रसाद आपन आप सुझ है, तिसकी जानो तृष्णा बुझ है, साध संग हर हर जस कहत, सर्व रोग त्यो हर जन रहत, आन दिन कीर्तन केवल बख्यान, ग्रस्त मैं सोई निर्बान, एक ऊपर जिस जन की आसा, तिसकी कटिया जमकी फासा, पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिस न लागै दुख, जिस को हर प्रभ मन चित आवै, सो संत सुहेला नहीं डुलावै, जिस प्रभ अपना कृपा करै, सो सेवक कहो किस ते डरै, जैसा सा तैसा दृष्टाया, अपने कार्य में आप समाया, सोदत सोदत सोदत सीजिया, गुरु प्रसाद तथ सब पूजिया, जब देखो तब सब किश मूल, नानक सो सूखम सोई अस्थूल, नह किश जन्म नह किश मरै, आपन चले तो आप ही करै, आवन जावन दृष्ट अन दृष्ट, आज्ञाकारी धारी सब श्रेष्ठ, आपे आप सगल मैं आप, अनेक जुगत रच, थाप उथाप अविनाशी नाही किश खंड, धारण धार रहो ब्रह्मंड, अलख अपिव पुरख प्रताप, आप जपाए त नानक जाप।
जिन प्रभ जाता सुसुभावंत सगल संसार उदरै तिन मंत। प्रभ के सेवक सगल उदाहरण, प्रभ के सेवक दुख बिसारण। आपे मेलै कृपाल गुरु का शब्द जप पय निहाल। उनकी सेवा सोई लागै जिसनु कृपा करै बड़ भागै। नाम जपत पावै बिश्राम नानक तिन पुरख को उत्तम करमान। जो किछ करै सो प्रभ कै रंग सदा सदा बसै हर संग। सहज सुभाए होवै सो होए करणे हार पछाणे सोए। प्रभ का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना। जिस ते उपजे तिस माहे समाए होए सुख निदान उन्हों बने आए। आप सिखाओ आप दिनो मान नानक प्रभ जन इको जान। सलोक सर्ब कला भरपूर प्रभ बिरथा जन नहार। जाकै सिमरन उदरिये नानक तिस बलहार। अष्टपदी टूटी गांडन हार गोपाल सर्व जिया पे प्रतपाल। सगल की चिंता जिस मन माहे तिस ते बिरथा कोई ना है। रे मन मेरे सदा हर जाप अविनाशी प्रभ आपे आप। आपन किया कछु न होए जे सौ प्राणी लोचै कोई। तिस बिन नाही तेरै किछ काम गात नानक जाप एक हर नाम। रूपवंत होए नाही मोहै प्रभ की जोत सगल घट सो है। तनवंता होए क्या को गर्भै जन सब किश तिसका दिया दरबै। आत सूरा जे को कहावै प्रभ की कला बिना कहता वै। जे को होए बहे दातार तिस देन हर जाने गवार। जिस गुर प्रसाद टूटे हों रोग नानक सो जन सदा आरोग। ज्यों मंदर को थमै थमन त्यों गुर का शब्द मनै अस थमन। ज्यों पाखाण नाव चढ़ तरै प्राणी गुर चरण लागत निस तरै। ज्यों अंधकार दीपक प्रकाश गुर दर्शन देख मन होए बिगास। ज्यों महा उद्यान में मार्ग पावै त्यों साधु संग मिले जोत प्रगटावै। तिन संतन की बाछो धूर नानक की हर लोचा पूर। मन मूर्ख काहे बिल लाइए पुरब लिखे का लिखिया पाइय। दुख सुख प्रभ देवन हार अवर त्याग तू तिसै चितार। जो काश करै सोई सुख मान भूला काहे फिरया जान। कौन बस आई तेरा संग लपट रहे रस लोभी पतंग। राम नाम जप हिरदे माहे नानक पात से ती घर जाहे। जिस वक्र को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया। ताज अभिमान लिहो मन मोल राम नाम हृदय मैं तोल। लाद के बसंत है संचाल अवर त्याग बिख्या जंजाल। धन तन कहे सब कोए मुख उजल हर दरगह सोए। एह वो एहो वपार विरला वपार है नानक ताक है सद बलहार है। चरण साध के धोए धोए पियो अर्प साध को अपना जियो। साध की धूर करो इशनान साध उपर जाइए कुर्बान। साध सेवा बटभागी पाई है साध संग हर कीर्तन गाई है। अनक बिघन के साधु राखै हर गुण गाय अमृत रस चाखै। ओट गही संतै दर आया सर्व सुख नानक तेह पाया। मेरे तक को जीवल नहार भूखे को देवत आधार। सर्विन धान जाति दृष्टि माहे प्रभ लेखे का लहना पाहे। सब किश तिसका करने जोग तिस दूसर हुआ न होग। जप जन सदा सदा दिन रहनी सब ती उच निर्मल ए करने कर कृपा। जिसको नाम दिया नानक सो जन निर्मल थिया। जा कै मन गुर की प्रतीत तिस जने आवै हर प्रभ चीत। भगत भगत सुनिए ते हुलोए जाके हृदय एको होए। सच करने सच ताकी रहत सच हृदय सत मुख कहत। साची दृष्ट साचा आकार सच वरतै साचा पासार। पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सो जन सच समाता। सलोक रूप न रेख न रंग केशो त्रह गुण ते प्रभ भेनो तिसे बुझाए नानका। जिस हो वैसो प्रसन्न अष्टपदी अविनाशी प्रभ मन में राख। मानुख की तू प्रीत आग तिस्ते परै नाही किशकोए। सर्व निरंतर एको सोए आपे भी ना आपे दाना गहर गंभीर विहीर सुजाना। पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद कृपा निधान दयाल पक्षांद। सातरे की चरणे पाओ नानक कै मन हो नराओ। मनसा पूर्ण सरणा जोग जो कर पाया सोई होग। हरन परन जाका नेत्र फोर तिसका मंत्र न जाने होर। आनंद रूप मंगल सद जाकै सर्व थोक सुनिए घर ताकै। राज मै राज योग मैं जोगी तप मैं तपीसर ग्रस्त मैं भोगी। त्याए त्याए भगतै सुख पाया नानक तिस पुरख का किनै अंत न पाया। जाकी लीला की मित नाहे सगल देव हारे अवगाहे। पिता का जन्म के जने पूत सगल परोए अपने सूत। सुमत ज्ञान तिहन जिन दे जन दास नाम त्यावै से। तेह गुण मैं जाको परमाए जन्म मरै फिर आवै जाए। ऊच नीच तिसके असथान जैसा जिन आवै तैसा नानक जान। नाना रूप नाना जाके रंग नाना भेक करै एक रंग। नाना बिद कीनो विस्तार प्रभ अविनाशी एक ओंकार। नाना चालित करे खिन माहे पूर रहे ओ पूर्ण सब ठाए।
ਨਾਨਾ ਬਿਧ ਕਰ ਬਨਤ ਬਨਾਈ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਈ ਸਭ ਘਟ ਤਿਸਕੇ ਸਭ ਤਿਸਕੇ ਠਾਉ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਾਉ ਨਾਮ ਕੇ ਥਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਿਮਰਤ ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸੁਣਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਆਕਾਸ ਪਤਾਲ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲ ਆਕਾਰ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਪੁਰੀਆਂ ਸਭ ਭਵਨ ਨਾਮ ਕੈ ਸੰਗ ਉਦਰੇ ਸੁਨ ਸ੍ਰਵਨ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਾਏ ਨਾਨਕ ਚੌਥੇ ਪਦ ਮੈਂ ਸੂਜਨ ਗਤ ਪਾਏ ਰੂਪ ਸਤ ਜਾਕਾ ਸਤ ਅਸਥਾਨ ਪੁਰਖ ਸਤ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਤੂਤ ਸਤ ਸਤ ਜਾਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਪੁਰਖ ਸਭ ਮਹਿ ਸਮਾਣੀ ਸਤ ਕਰਮ ਜਾਕੀ ਰਚਨਾ ਸਤ ਮੂਲ ਸਤ ਸਤ ਉਤ ਪਤ ਸਤ ਕਰਣੀ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲੀ ਜਿਸੈ ਬੁਝਾਏ ਤਿਸੈ ਸਭ ਭਲੀ ਸਤਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੁਖਦਾਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ ਸਤ ਭਜਨ ਸਾਧੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤ ਤੇ ਜਨ ਜਾਕੈ ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਤ ਨਿਰਤ ਬੂਝੈ ਜੇ ਕੋਇ ਨਾਮ ਜਪਤ ਤਾਂ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ ਆਪ ਸਤ ਕੀਆ ਸਭ ਸਤ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੀ ਮਿਤ ਗਤ ਜਿਸ ਕੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੁਕਰਣੇ ਹਾਰ ਅਵਰ ਨਾ ਬੂਝ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੀਆ ਨਾਨਕ ਜੋਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਵਰਤੀਆ ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਭਏ ਬਿਸਮਾਦ ਜਿਨ ਬੂਝਿਆ ਤਿਸਾਇਆ ਸਵਾਦ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ ਰਾਜ ਜਨ ਰਹੇ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਪਦਾਰਥ ਲਹੇ ਓਏ ਦਾਤੇ ਦੁੱਖ ਕਾਟਣ ਹਾਰ ਜਾ ਕੈ ਸੰਗ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ ਜਨ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋਵਟ ਭਾਗੀ ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀਰਤਨ ਜਨ ਗਾਵੈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਵੈ ਸਲੋਕ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸਾਚੋ ਹੈ ਪੀ ਸਾਚੋ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੇ ਸਾਚੋ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਚਰਨ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਸੁਨਹਾਰ ਪੂਜਾ ਸਤ ਸਤ ਸੇਵਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਤ ਸਤ ਭੇਖਣਹਾਰ ਨਾਮ ਸਤ ਸਤ ਧਿਆਵਨਹਾਰ ਆਪ ਸਤ ਸਤ ਸਵਤਾਰੀ ਆਪੇ ਗੁਣਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਬਖਤਾ ਸੁਰਤ ਸਤ ਸਤ ਜਸ ਸੁਨਤਾ ਬੁਜਨ ਹਰ ਖੁਰ ਸਤ ਸਭ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹਿਰਦੈ ਜਿਨ ਮਾਨਿਆ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਤਿਨ ਮੂਲ ਪਛਾਨਿਆ ਜਾਂ ਕਹਿ ਹਿਰਦੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਤਤ ਗਿਆਨ ਤਿਸ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਭੈ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਬਸਾਨਾ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਤਿਸ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨਾ ਬਸਤ ਮਾਹੇ ਲੈ ਬਸਤ ਗਡਾਈ ਤਾ ਕੋ ਭਿੰਨ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾਈ ਬੂਝੈ ਬੂਝਨ ਹਾਰ ਬਬੇਕ ਨਾਰਾਇਣ ਮਿਲੇ ਨਾਨਕ ਏਕ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਹੈ ਮਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਸੇਵਕ ਜਾਣੈ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੇਵਕ ਨਾਮ ਕੈ ਰੰਗ ਸੇਵਕ ਕੋ ਪ੍ਰਪਾਲਨ ਹਾਰਾ ਸੇਵਕ ਕੀ ਰਾਖੈ ਨਿਰੰਕਾਰਾ ਸੋ ਸੇਵਕ ਜਿਸ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭ ਤਹਾਰੈ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਮਾਰੈ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕਾ ਪਰਦਾ ਢੱਕੈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਸਰ ਪਰ ਰਾਖੈ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਦੇ ਵਡਾਈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪਾਈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪਤ ਰਾਖੈ ਤਾਂ ਕੀ ਗਤ ਮਿਤ ਕੋਈ ਨਾ ਲਾਖੈ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਕੋ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਊਚ ਤੇ ਊਚੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਦੈ ਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਨੇਕੀ ਕੀਰੀ ਮੈਂ ਕਲ ਰਾਖੈ ਭਸਮ ਕਰੈ ਲਸਕਰ ਕੋਟ ਲਾਖੈ ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਸਨ ਕਾਢ ਤੇ ਆਪ ਤਾ ਕੋ ਰਾਖਤ ਦੇ ਕਰ ਹਾਥ ਮਾਨਸ ਜਤਨ ਕਰਤ ਬਭਾਂਤ ਤਿਸਕੇ ਕਰਤ ਬਿਰਥੇ ਜਾਤ ਮਾਰੀ ਨ ਰਾਖੈ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕਾ ਰਾਖਾ ਸੋਏ ਕਾਹੇ ਸੋਚ ਕਰੇ ਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਲਖ ਗਡਾਣੀ ਬਾਰੰਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀਐ ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਹੋ ਮਨ ਤਨ ਤ੍ਰਪੀਐ ਨਾਮ ਰਤਨ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ ਤਿਸ ਕਿਸ਼ ਅਵਰ ਨਾਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਇਆ ਨਾਮ ਧਨ ਨਾਮੋ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨਾਮੋ ਸੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਕਾ ਸੰਗ ਨਾਮ ਰਸ ਜੋ ਜਨ ਤ੍ਰਿਪ ਤਾਨੇ ਮਨ ਧਨ ਨਾਮੇ ਨਾਮ ਸਮਾਨੇ ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਨਾਮ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਸਦਕਾਮ ਬੋਲੋ ਜਸ ਜਿਹ ਬਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੀ ਨੀ ਦਾਤ ਕਰੈ ਭਗਤ ਆਤਮ ਕੈ ਚਾਏ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਸਿਉ ਰਹੇ ਸਮਾਏ ਜੋ ਹੋਆ ਹੋਵਤ ਸੋ ਜਾਣੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਤਿਸਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕੌਣ ਬਖਾਨੋ ਤਿਸਕਾ ਗੁਣ ਕਹੇ ਇਕ ਨ ਜਾਨੋ ਅਠ ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਭ ਸੇ ਹਜੂਰੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੇ ਜਨ ਪੂਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਕੀ ਓਟਲੇ ਮਨ ਤਾਨੇ ਆਪਣਾ ਤਿੰਨ ਜਨ ਦੇ ਜਿਨ ਜਨ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਛਾਤਾ ਸੋ ਜਨ ਸਰਬ ਥੋਕ ਕਾ ਦਾਤਾ ਤਿਸਕੀ ਸਰਨ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਤਿਸਕੇ ਦਰਸ ਭਾਵ ਮਿਟਾਵੈ ਅਵਰ ਸਿਆਨਪ ਸਗਲੀ ਛਾਡ ਤਿਸ ਜਨ ਕੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਗ ਆਵਣ ਜਾ ਨਾ ਹੋਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੇ ਪੂਜੋ ਸਦ ਪੈਰਾ ਸਲੋਕ ਸਤਿਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗ ਸਿੱਖ ਉਦਰੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਉ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਸੇਵਕ ਕੋ ਗੁਰ ਸਦਾ ਦਇਆਲ ਸਿੱਖ ਕੀ ਗੁਰ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰੈ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਰੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਟੈ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਹਟੈ
ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਉ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਡਭਾਗੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਾ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰੈ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਉ ਜੀ ਨਾਲ ਸਮਾਰੈ ਗੁਰ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਕ ਜੋ ਰਹਿ ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮੈਂ ਸਹਿ ਆਪਸ ਕਉ ਕਰ ਕਛੁ ਨ ਜਨਾਵੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸਦ ਧਿਆਵੈ ਮਨ ਵੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸ ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੀ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਿਹ ਕਾਮੀ ਤਿਸ ਕਉ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਲੇ ਬੀਸ ਬਿਸਵੇ ਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨੈ ਸੋ ਸੇਵਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਗਤ ਜਾਣੈ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜਿਸਰਦੈ ਹਰਿ ਨਾਉ ਅਨਕ ਬਾਰ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਜਾਉ ਸਰਬਨਿਧਾਨ ਜੀ ਕਾ ਦਾਤਾ ਆਠ ਪਹਿਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਮੈਂ ਜਨ ਜਨਮੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਏਕੈ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਛ ਭਰਮ ਸਹਿ ਸਿਆਣ ਪੱਲੈ ਨ ਜਾਈਏ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਗੁਰ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਪੁਨੀਤ ਪਰਸਤ ਚਰਨ ਗਤ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ ਭੇਟ ਪਸੰਗ ਰਾਮ ਗੁਣ ਰਵੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਦਰਗਹਿ ਗਵੇ ਸੁਨ ਕਰ ਬਚਨ ਕਰਨ ਆਧਾਨੇ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਆਤਮ ਪਤੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਆਖਿਆਓ ਜਾ ਕਾ ਮੰਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੇਖੈ ਹੋਏ ਸੰਤ ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਪਾਵੈ ਤਿਸ ਲਈ ਮਿਲਾਏ ਜੇ ਬਾਏ ਕੋ ਸਤ ਅਨੇਕ ਸਤਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਬਿਬੇਕ ਕਾਹੂ ਬੋਲ ਨਾ ਪਹੁਚਤ ਪ੍ਰਾਨੀ ਅਗਮ ਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰਬਾਨੀ ਨਿਰਾਹਾਰ ਨਿਰਵੈਰ ਸੁਖਦਾਈ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਿਨ ਨਾ ਪਾਈ ਅਨਕ ਭਗਤ ਬੰਧਨ ਨਿਤ ਕਰੈ ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੈ ਸਿਮਰੈ ਸਤਬਲਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਜਪਨੇ ਇਹੋ ਹਰ ਰਸ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ ਅਮਰ ਸੋ ਹੋਏ ਉਸ ਪੁਰਖ ਕਾ ਨਾਹੀ ਕਦੇ ਬਿਨਾਸੋ ਜਾ ਕੈ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਣ ਤਾਸ ਅਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲੇ ਸੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ ਕਉ ਦੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਲੇਪ ਮਨ ਮੈਂ ਰੱਖੈ ਹਰ ਹਰ ਏਕ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ ਨਾਨਕ ਭਰਮ ਮੋਹ ਦੁਖ ਤਹਿ ਤੇ ਨਾਸੇ ਤਾਪਤ ਮਾਹੇ ਠਾਣ ਵਰਤਾਈ ਆਨੰਦ ਪਹਿਆ ਦੁਖ ਨਾਠੇ ਪਹਾਈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਮਿਟੇ ਅੰਦੇਸੇ ਸਾਧੂ ਕੇ ਪੂਰਨ ਉਪਦੇਸੇ ਭਾਉ ਚੂਕਾ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਬਸੇ ਸਗਲ ਬਿਆਦ ਮਨ ਤੇ ਖੈ ਨਸੇ ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਤਿਨ ਕਿਰਪਾ ਤਹਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਪ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੀ ਥਿਤ ਪਾਈ ਚੁਕੇ ਭ੍ਰਮ ਗਵਨ ਸੁਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਸਰਵਨ ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ ਸਰਗੁਣ ਪੀਓ ਹੀ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਿਨ ਸਗਰੀ ਮੋਹੀ ਆਪਣੇ ਚਿਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਬਣਾਏ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਏ ਹਰ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਸੋਏ ਓਤ ਪੋਤ ਰਵਿਆ ਰੂਪ ਰੰਗ ਭੈ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਰਾਚ ਰਚਨਾ ਆਪਣੀ ਕਲ ਤਹਾਰੀ ਅਨਕ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਲਹਾਰੀ ਸਲੋਕ ਸਾਥ ਨਾ ਚਾਲੈ ਬਿਨ ਭਜਨ ਵਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਸ਼ਾਰ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਮਾਵ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਧਨ ਸਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ ਏਕ ਸਿਮਰ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਅਵਰ ਉਪਾਵ ਸਭ ਮੀਤ ਵਿਸਾਰੋ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਿਧ ਮੈਂ ਉਰਤਹਾਰੋ ਕਰਨ ਕਾਰਣ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਮਰੱਥ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਗਾਹੋ ਨਾਮ ਹਰ ਵਥ ਇਹੋ ਧਨ ਸੰਚਾ ਹੋਵੋ ਭਗਵੰਤ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ ਏਕ ਆਸ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਹੇ ਸਰਬ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਮਿਟ ਜਾਏ ਜਿਸ ਧਨ ਕੋ ਚਾਰ ਕੁੰਠ ਉਠਤ ਹਵੈ ਸੋ ਧਨ ਹਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਵੈ ਜਿਸ ਸੁਖ ਕੋ ਨਿਤ ਬੰਸ਼ ਮੀਤ ਸੋ ਸੁਖ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪਰੀਤ ਜਿਸ ਸੋਭਾ ਕੋ ਕਰੈ ਭਲੀ ਕਰਨੀ ਸਾ ਸੋਭਾ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸਰਣੀ ਅਨਕੋ ਪਾਵੀ ਰੋਗ ਮਿਲਨ ਰੋਗ ਨਾ ਜਾਏ ਰੋਗ ਮਿਟੈ ਹਰ ਅਵ ਖਦ ਲਾਏ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਮੈਂ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਜਪ ਨਾਨਕ ਦਰਗਹਿ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਨ ਪ੍ਰਭੋ ਦੋ ਹਰ ਕੈ ਨਾਏ ਦਹਿ ਦਿਸ ਧਾਵਤ ਆਵੈ ਠਾਏ ਤਾਂ ਕੋ ਬਿਘਨ ਨ ਲਾਗੈ ਕੋਏ ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਬਸੈ ਹਰ ਸੋਏ ਕਲ ਤਾਤੀ ਠਾਂਡਾ ਹਰ ਨਾਉ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਉ ਪਾਉ ਬਿਨ ਸਹਿ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਆਸ ਭਗਤ ਪਾਏ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਤਿਤ ਘਰ ਜਾਏ ਬਸੈ ਅਬਿਨਾਸੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਾਟੀ ਜਮ ਫਾਸੀ ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਕਹੇ ਜਨ ਸਾਚਾ ਜਨਮ ਮਰੈ ਸੁਖਾ ਚੋ ਕਾਚਾ ਆਵਾ ਗਵਨ ਮਿਟੈ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵ ਆਪ ਤਿਆਗ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਇਉਂ ਰਤਨ ਜਨਮ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰ ਹਰ ਹਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ ਅਨਕੂ ਪਾਵਨਾ ਛੁੱਟਣ ਹਾਰੇ ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰੇ ਹਰ ਕੇ ਭਗਤ ਕਰੋ ਮਨ ਲਾਏ ਮਨ ਬੰਸ਼ਤ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਏ ਸੰਗ ਨ ਚਾਲਸ ਤੇਰੇ ਧਨਾ ਤੂੰ ਕਿਆ ਲਪਟਾਵੈ ਮੂਰਖ ਮਨ ਸੋਤਮੀਤ ਕੁਟੰਬ ਅਰ ਬਨਤਾ ਇਨ ਤੇ ਕਹੋ ਤੁਮ ਕਵਨ ਸੁਨਾਥਾ ਰਾਜ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੁਥਾਰ ਇਨ ਤੇ ਕਹੋ ਕਵਨ ਛੁਟਕਾਰ ਅਸ ਹਸਤੀ ਰਥ ਅਸਵਾਰੀ ਝੂਠਾ ਡੰਬ ਝੂਠ ਪਾਸਾਰੀ ਜਿਨ ਦੀਏ ਤਿਸ ਬੁਝੇ ਨਾਮ ਬੇਗਾਨਾ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਨਾਨਕ ਪਛਤਾਨਾ
ਗੁਰ ਕੀਮਤ ਦੂਲੇ ਇਆਨੇ ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੂਬੇ ਸਿਆਣੇ ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਮਨ ਮੀਤ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਤੁਮਾਰੋ ਚੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਾਖੂ ਮਨ ਮਾਹੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਜਾਹੇ ਆਪ ਜਪੋ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ ਸੁਨਤ ਕਹਿਤ ਰਹਿਤ ਗਦ ਪਾਵਹੁ ਸਾਰ ਭੂਤ ਸਤ ਹਰ ਕੋ ਨਾਉ ਸਹਿ ਸੁਭਾਇ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਉ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਤੇਰੀ ਉਤਰ ਸਮੈਲ ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਹੋਮੈ ਬਿਖ ਫੈਲ ਹੋਹੇ ਅਚਿੰਤ ਬਸੈ ਸੁਖ ਨਾਲ ਸਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਲ ਛਾੜ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲੀ ਮਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਵੈ ਸਚ ਤਨਾ ਹਰ ਪੂੰਜੀ ਸਾਂਚ ਕਰੋ ਵਿਵਹਾਰ ਇਹਾਂ ਸੁਖ ਦਰਗੈ ਜੈਕਾਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਦੇਖੋ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਏਕੋ ਜਪ ਏਕੋ ਸਲਾਹੇ ਏਕ ਸਿਮਰ ਏਕੋ ਮਨ ਆਹੇ ਏਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਣ ਗਾਉ ਅਨੰਤ ਮਨ ਤਨ ਜਾਪ ਏਕ ਭਗਵੰਤ ਏਕੋ ਏਕੋ ਏਕ ਹਰ ਆਪ ਪੂਰਨ ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਅਨਕ ਬਿਸਥਾਰ ਏਕ ਤੇ ਪਹੇ ਏਕ ਅਰਾਧ ਪ੍ਰਾਸਤ ਗਏ ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਏਕ ਪ੍ਰਭਰਾਤਾ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਏਕ ਜਾਤਾ ਸਲੋਕ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਪਰਿਆ ਤਉ ਸਰਣਾਏ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਾਚਕ ਜਨ ਜਾਚੈ ਪ੍ਰਭਦਾਨ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੋ ਹਰ ਨਾਮ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਮੰਗੋ ਧੂਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮੇਰੇ ਸਰਦਾ ਪੂਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਸਾਸ ਸਾਸ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮੇ ਪਿਆਵੋ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਲਾਗੈ ਪ੍ਰੀਤ ਭਗਤ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਨਿਤ ਨੀਤ ਏਕ ਓਟ ਏਕੋ ਆਧਾਰ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਸਾਰ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਹਾਂ ਸੁਖ ਹੋਏ ਹਰ ਰਸ ਪਾਵੈ ਬਿਰਲਾ ਕੋਏ ਜਿਨ ਚਾਖਿਆ ਸੇ ਜਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਡੋਲਾਨੇ ਸੋ ਭਰ ਭਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਰੰਗ ਉਪਜੈ ਚਾਓ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਪਰੇ ਸਰਣ ਆਨ ਸਭ ਤਿਆਗ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਆਨ ਦਿਨ ਲਿਵ ਲਾਗ ਵਡਭਾਗੀ ਜਪਿਆ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੁਖ ਹੋਏ ਸੇਵਕ ਕੀ ਮਨਸਾ ਪੂਰੀ ਭਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਮਤ ਲਈ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਹੋਇਓ ਦਇਆਲ ਸੇਵਕ ਕੀਨੋ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਮੁਕਤ ਜਨ ਭਇਆ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਭ੍ਰਮ ਗਇਆ ਐਸ਼ ਪੁਨੀ ਸਰਧਾ ਸਭ ਪੂਰੀ ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਤਸੰਗ ਹਜੂਰੀ ਜਿਸ ਕਾ ਸਤਨ ਲਿਆ ਮਿਲਾਏ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਨਾਮ ਸਮਾਏ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਘਾਲ ਨਾ ਪਾਨੈ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਕੀਆ ਜਾਨੈ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜਿਨ ਸਭ ਕਿਛੁ ਦੀਆ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਜੀਵਨ ਜੀਆ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਅਗਨ ਮੈਂ ਰਾਖੈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋ ਬਿਰਲਾ ਲਖੈ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਬਿਖ ਤੇ ਕਾਢੈ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਟੂਟਾ ਗਾਂਢੈ ਗੁਰਪੂਰੈ ਤਤ ਇਹ ਬੁਝਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਜਨ ਤਿਹਾਇਆ ਸਾ ਜਨ ਸੰਤ ਕਰੋ ਇਹੋ ਕਾਮ ਆਨ ਤਿਆਗ ਜਪੋ ਹਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ ਆਪ ਜਪਹੋ ਅਵਰ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ ਭਗਤ ਪਾਏ ਤਰੀਏ ਸੰਸਾਰ ਬਿਨ ਭਗਤੀ ਤਨ ਹੁਸੀ ਸ਼ਾਰ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਸੁਖ ਨਿਤ ਨਾਮ ਬੂਟਤ ਜਾਤ ਪਾਏ ਬਿਸਰਾਮ ਸਗਲ ਦੁਖ ਕਾ ਹੋਵਤ ਨਾਸ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪੋ ਗੁਣਤਾਸ ਉਪਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਚਾਓ ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਹੀ ਸੁਆਓ ਨੇਤਰੋਂ ਪੇਖ ਦਰ ਸੁਖ ਹੋਏ ਮਨ ਬਿਗਸੈ ਸਾਧ ਚਰਨ ਧੋਏ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਤਨ ਰੰਗ ਬਿਰਲਾ ਕੋ ਪਾਵੈ ਸੰਗ ਏਕ ਬਸਤ ਦੀਜੈ ਕਰਮਾਇਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਪਮਾ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਰਹਿਆ ਸਰਬ ਸਮਾਏ ਪ੍ਰਭ ਬਖਸ਼ਾਂ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਭਗਤ ਵਿਸ਼ਲ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲ ਅਨਾਥ ਨਾਥ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਸਰਬ ਘਟਾਂ ਕਰਤ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਕਾਰਣ ਕਰਤਾਰ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਸੋ ਹੋਏ ਪੁਨੀਤ ਭਗਤ ਪਾਏ ਲਾਵੈ ਮਨ ਹੀਤ ਹਮ ਨਿਰਗੁਨਿਆਰ ਨੀਚ ਅਜਾਨ ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਸਰਣ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਸਰਬ ਬੈਕੁੰਠ ਮੁਕਤ ਮੋਖ ਪਾਏ ਏਕ ਨਿਮਕ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅਨਕ ਰਾਜ ਭੋਗ ਵਡਿਆਈ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਕਥਾ ਮਨ ਪਾਈ ਬਹੁ ਭੋਜਨ ਕਾਪਰ ਸੰਗੀਤ ਰਸਨਾ ਜਪਤੀ ਹਰ ਹਰ ਨੀਤ ਭਲੀ ਸੁ ਕਰਨੀ ਸੋਭਾ ਧਨਵੰਤ ਹਿਰਦੈ ਬਸੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰਮੰਤ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਦੇਹੋ ਨਿਵਾਸ ਸਰਬ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸਲੋਕ ਸਰ ਗੁਣ ਨਿਰ

नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। अष्टपदी पूरे गुरु का सुनो उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेखो, सास सास सिमरो गोबिंद, मन अंतर की उतरे चिंद, आस अनित त्याग हो त्रंग, संत जना की धूर मन मंग, आप छोड़ बेनती कर रहो, साधु संग अग्न सागर तर रहो, हार तन के पर लेहो भंडार, नानक गुर पूरे नमस्कार, खेम कुशल सहज आनंद, साध संग भज परमानंद, नरक निवार उधार हो जियो, गुण गोबिंद अमृत रस पियो, चित चित वाहो नारायण एक, एक रूप जाके रंग अनेक, गोपाल दमोदर दीन दयाल, दुख पंजन पूरन कृपाल, सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का यह आधार, उत्तम सलोक साध के वचन, अमलीक लाल यह रतन, सुनत कमावत हो तो उधार, आप तरह लोक निस्तार, सफल जीवन सफलता का संग, जाके मन लगा हर रंग, जय जय शब्द नाहद वाजय, सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजय, प्रगटे गोपाल महात कै माथे, नानक उदरे तिन कै साथे, सरण जोग सुन सरणी आए, कर कृपा प्रभ आप मिलाए, मिट गए बैर पए सब रेन, अमृत नाम साध संग लैन, सो प्रसन्न पए गुरुदेव, पूर्ण होई सेवक की सेव, आल जंजाल बेकारते रहते, राम नाम सुन रसना कहते, कर प्रसाद दया प्रभ तारी, नानक निबही खेप हमारी, प्रभ की उस्तत करहु संत मीत, सावधान एकाग्र चीत, सुख मने सहज गोबिंद गुण नाम, जिस मन बसै सोहो तिने धान, सर्व छाता की पूर्ण होए, प्रधान पुरख प्रगट सब लोए, सब ते ऊच पाए अस्थान, बहुर न होवे आवन जान, हर तन खाट चले जन सोए, नानक जिसे प्राप्त हुए, खेम सांत रित नवनिद, बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध, विद्या तप जोग प्रभ ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान, चार पदार्थ कमल प्रगास, सब कै मद सगल ते उदास, सुंदर चतुर तत का बेता, समदर्शी एक दृष्टिता, ए फल तिस जन कै मुख पहने, गुरु नानक नाम बचन मन सुने, एहो निधान जपै मन कोए, सब जुग मैं ताकी गत होए, गुण गोबिंद नाम तुन बाणी, सिमरत शास्त्र वेद बखाणी, सगल मतांत केवल हर नाम, गोबिंद भगत कै मन विश्राम, कोट अपराध साध संग मिटाए, संत कृपा ते जमते छुटाए।

जन्म मरण ताका दुख निवारे, दुर्लभ दे तत्काल उधारे, निर्मल शोभा अमृत ताके बानी, एक नाम मन माहे समाने, दुख रोग बिन से पै परम, साध नाम निर्मल ताके कर्म, सब ते ऊच ताके शोभा बनी, नानक एह गुण नाम सुखमनी।

अधूर कथना कथि न आवे तोट कथ कथ कथि कोटि कोट कोट देता दे लै दे तक पाहे जुगा जुगंत।

नानक भगता सदा विगास सुने दुख पाप का नाश सुने ईश्वर ब्रह्मा इंद सुने मुख साला हनुमंद सुने जोग जुगत तन भेद।

संसार जिस हथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच न कोए, राती रुती थिती वार। पवन पाणी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मशाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत। करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथै सोहन पंच परवार, नदरी करम पवै निसान। कच पकाई उत्थै पाए, नानक गया जापै जाए, धर्म कंड काय हो धर्म, ज्ञान कंड काया को कर्म। केते पवन पाणी वैसंत्र, केते काण महेश, केते बरमे काड़त घड़ी है रूप रंग के वेश। केतिया कर्म भूमि मेर, केते केते धूप देश, केते इंद चंद सूर, केते केते मंडल देश, केते सिद्ध बुद्धनाथ, केते केते देवी वेश, केते देवदान मुन, केते केते रतन समुंद, केतिया खाणी केतिया बाणी, केते पात नरेंद, केतिया सुरती सेव, केते नानक अंत नायंत, ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड। तिथै नाद विनोद कूड़ आनंद, शर्म खंड की बाणी रूप, तिथै काड़त घड़िए बहुत अनूप। ताकिया गल्लां कथिया न जाहे, जे को कह पिछे पछताए, तिथै घड़िए सुरत मत मन बुद्ध, तिथै घड़िए सुरां सिद्धां की सुध। कर्म खंड की बाणी जोर, तिथै होर न कोई होर, तिथै जोत महाबल सूर। तिन महराम रहा भरपूर, तिथै सीतो सीता महिमा माहे, ताके रूप न कथने जाहे, ना उहे मरहे न ठागे जाहे, जिनकै राम वसै मन माहे, तिथै भगत वसै के लो। करह आनंद सच्चा मन सोए, सच खंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल, तिथै खंड मंडल वर भंड, जी को कथै तंत अनंत, तिथै लो लो आकार, जिव जी हुकुम तिवै तिवकार। विखै विकसै कर विचार, नानक कथना करड़ा सार, जत पहारा धीरज सुनियार, अहरन मत वेद हथियार, पौ खलागन तपताओ, भांडा पौ अमृत ढाल।

कालो श्लोक पवन गुरु पाणि पिता माता धरत महत दिवस रात दुए दाई दाया खेले सगल जगत।

अपीत हैं, त्रिमान है, निदान है, त्रिवर्ग है, असर्ग है, अनिल है, अनाद है, अजय है, अजाद है, अजन्म है, अवर्ण है, अपूत है, अपर्ण है, अगंज है, अपांज है, अचूज है, अचांज है, अमीक है, रफीक है, अतंध है, अबंध है, निर्बूज है, असूज है, अकाल है, अजाल है, अलाह है, अजा है, अनंत है, महंत है, अलीक है, निरसीक है, निर्लंब है, असंभ है, अगम है, अजम है, अपूत है, अछूत है, अलोक है, अशोक है, अकर्म है, अपर्म है, अजीत है, अपीत है, अबाह है, अगाह है, अमान है, निदान है, अनेक है, विरेक है, भुजंग प्रयाचंद, नमो सर्वमानी समस्ति निदानी, नमो देव देवे अपेखी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्व पाले, नमो सर्व गौणे, नमो सर्व पौणे, अनंगी अनाथे नरसंगी परमाते, नमो पान पाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो पान पाने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने, नमो नृत्य नृत्य, नमो नाद नादे, नमो पान पाने, नमो बाद वादे, अनंगी अनामी समस्ति स्वरूपे परपंगी परमाते, समस्ति बेपूते कलंकंग बिनाने कलंकी स्वरूपे, नमो राज राजेश्वरं परम रूपे, नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे, नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे, नमो शस्त्रपाणे, नमो वस्त्रमाणे, नमो परम ज्ञाता, नमो लोकमाता, अपेखी अपरमी अपोगी अपुगते, नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते, नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे, नमो प्रेत प्रे देवेशु धर्मे, नमो रोग हर्ता, नमो राग रूपे, नमो साह साहंग, नमो पूप पूपे, नमो दान दाने, नमो मान माने, नमो रोग रोगे, नमस्तंग स्नानंग, नमो मंत्र मंत्रंग, नमो जंत्र जंत्रंग, नमो इष्ट इष्टे, नमो तंत्र तंत्रं, सदा सच्चिदानंद सर्वं परनासी, अनुपे अरूपे समस्तुल निवासी, सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्धकर्ता, अदो उर्ध अर्धं अगंग उगहर्ता, परम परम परमेश्वरं प्रोचपालं, सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं, अचिदी अपेदी अनामं अकामं, समस्तो पराजी समस्तस्ततामं, तेरा जोर चाचरी चंद, जले हैं, तले हैं, अपीत हैं, अपे हैं, प्रभु हैं, अजू हैं, अदेश हैं, अपेश हैं, भुजंग प्रयाचंद, अगाध्य अबाध्य अनंदी स्वरूपे, नमो सर्वमान्ये समस्ति निदाने, नमस्तुंग निर्नाथे, नमस्तुंग परमाते, नमस्तुंग गंजे, नमस्तुंग पंजे, नमस्तुंग काले, नमस्तुंग पाले, नमो सर्वदेशे, नमो सर्वपेशे, नमो राजराजे, नमो साज साजे, नमो साह साहे, नमो माह माहे, नमो गीत गीते, नमो प्रीत प्रीते, नमो रोख रोके, नमो शोक शोके, नमो सर्व रोगे, नमो सर्व भोगे, नमो सर्व जीतंग, नमो सर्व पीतंग, नमो सर्व ज्ञानंग, नमो परम तानंग, नमो सर्व मंत्रंग, नमो सर्व जंत्रंग, नमो सर्व दृष्टंग, नमो सर्व कृष्टंग, नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे, नमो जीव जीवंग, नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिजे, कृपालं स्वरूपे कुकर्मं परनासी, सदा सर्वदा हृदय सिद्धं निवासी, चरपट चंद्व प्रसाद, अमृत कर्मे अमृत धर्मे, अकल जोगे अचल भोगे, अचल राजे अटल साजे, अखल धर्मंग लख कर्मं, सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने, सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं, सर्वं भुक्ता सर्वं जुगता, सर्वं देवं सर्वं पेवं, सर्वं काले सर्वं पाले, रुवाल चंत्व प्रसाद, आदरूपनाद मूर्त जौन पुरख अपार, सर्वमान त्रिमान देव अपेवाद उदार, सर्वपालक सर्वकालक सर्वकूपन काल, जतर ततर विराज हे अवतूत रूप रिसाल, नाम ठाम न जात जाक रूप रंग नरे, एकाद पुरख उदार मूर्त जौन आदशेक, देश और न पेश जाकर रूप रेख न राग, जतर तत्र दिशा विशा हुए फैले अनुराग, नाम काम हीन पेख ताम न जाहे, सर्वमान सर्वत्र मान सदै मान पताहे, एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक,
खेल खेल खेल खेल अनंत को फिर एक जे भेव न जानी जे बेद और कतेब रूप रंग न जात पासो जानी के जेब तात मात न जात जाकर जन मरण बहीन चकर बकर फिर चतुर चक मानी पुरतीन लोक चौदह के बिखै जग जापी जे जाप आद देवनाद मूरत थाप्यो सबै जे थाप परम रूप नीत मूरत पूरन पुरख अपार सर्व विश्व रच्यो स्वयं भव गणन भंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख देश धर्म धाम सो परम रहत अभूत अलख अपेश अंग राग न रंग जा कह जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुख दाय काम आप रूप अमी कनुष्ट ते पुरख अवतूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप असूत अंग ही न भंग ना तुम एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपेख सर्व शास्त्र न जा नहीं जे रूप रंग रेख परम वेद प्राण जा कह नित भक्त नित कोट सिमृत प्राण शास्त्र नया वही वह चित मद पार चंतव प्रसाद गुणगन उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निश्चिन अनास आजान बाहु साहन साहु रा

काल अनकाल अनभूत अंग वाबा अपंग गत मित अपार गुणगण उदार मुनगण प्रणाम निरपय निकाम अद्भुत प्रचंड मितगत अखंड अलिश्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वा प्रणा डेअ बाड्य चात्री चंद त्व प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निर्नामे अकामे पुजंग प्रया चंद चतुर चक्र करता चतुर चक्र हरता चतुर चक्र दानी चतुर चक्र जानी चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्र परती चतुर चक्र पाली चतुर चक्र काली चतुर चक्र पासे चतुर चक्र वासे चतुर चक्र माने चतुर चक्र जाने चाचरी चंद न सत्र न मित्र न परमंग न पितर न कर्मंग न काय अजन्मंग अजाय ना चित्र न मित्र परे है पवित्र प्रतिशय अतिशय अदृश्य कृशय भगवती चंद प्रसाद कथते हे आचिज देश के आज पिश है के आ गंज कर मैं के आ पंज पर मैं के आ पिज लुक है के आदित सुख है के अवतूत वर्ण है के विभूत करण है के राजंग प्रभा है के धर्मंग तुझा है के आशोक वर्ण है के सर्व अपर्ण है के जगतंग कृति है के छत्रंग छत्री है के बरमंग स्वरूप है के अनुभव अनुप है के आद अदेव है के आप अपेव है के चित्रंग बहिन है के कह अधीन है के रोजी रिजा कह रही मैं रिहा कह के पाक बेअब है के जय भूल गैब है के अफुल गुनाह है के साह अनुसाह है के कारण पुनिंद है के रोजी देहांत है के राजक रहीम है के कर्मंग करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र जाने है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राज्य है के सर्वत्र साज्य है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहु के सर्वत्र पाहु के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज्य है के सर्वत्र राज्य है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भूख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान्य है के सर्वत्र जाप्य है के सर्वत्र थाप्य है के सर्वत्र पान्य है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वं कलिम है के परमं फहीम है के अकल अलम है के साहिब कलाम है के हुस्नल वजू है तो मामूल रजू है हमीसुल सलाम है सलीखत मुदाम है गनीमुल शिकस्त है गरीबुल फरस्त है बिलंदुल मकान है जमीनुल जमान है तभी जुल तुमा रजूअल निदान है हरीफुल अजीम मै रजाइक यकीन है अनिकल तरंग है अभेद है अपंग है अजीजुल निवाज है गनीमुल खिराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रभा है सुजुक्त सुधा है सदैवं स्वरूप है अपेधी अनूप है समस्तोपराज है सदा सर्वसाज है समस्तुल सलाम है सदैवल अकाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओंगाध रूपे अनाथ ओंगाध रूप है अनाथ स्वरूप है अनंगी अनामी त्रिपंगी त्रिकामी त्रिपंगी अनंगी अनामी त्रिपंगी त्रिकामी त्रिवर्गं त्रिबाधे अगंजे अगाधे सुभं सर्वभागे सुसर्वा अनुरागे त्रिपुगत स्वरूप है छिज है अछूत है कि नरकं प्रणास है पृथ्वल प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैवं सदा है विभुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है निरुक्त सदा है विभुक्त प्रभा है अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है चाचरी चंद अपंग है अनंग है अपेख है अलेख है अपर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अपूत है अतूत है अनास है उदास है अतंध है अबंध है अभक्त है विरक्त है अनास है प्रकाश है निचिंत है सुनित है अलिख है अधिख है अलेख है अपेख है अटा है अगा है असंभ है अगम है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजाद है अजाद है चिरपट चंत्व प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हरता सर्वंग कर्ता सर्वंग प्राणु सर्वंग त्राणु सर्वंग कर्मु सर्वंग तर्मु सर्वंग युक्ता सर्वंग मुक्ता रसावल चंत्व प्रसाद नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते
परमात्म परमाते सदा सर्व साथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पुत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते निरसाकं सरी कह मितो अमी कह सदैवं प्रभाह अजय है अजाह भगवती चंद्व प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजिर हजूर है हमें सुल सलाम है समस्तुल कलाम है के साहिब दिमाग है के हुस्नुल चिराग है के कामल करीम है के राजक रहीम है के रोजी देहंद है के राजक रहिंद है करीमुल कमाल है के हुस्नुल जमाल है गनीमुल खिराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल सिकन है हिरासुल फिकन है कलंकं परनाश है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजायक रहीम है समस्तुल जुबा है के साहिब किरा है के नरकं परनाश है बहस्तुल निवास है के सर्वल गवन है हमीसुल रवन है तमामुल तमीज है समस्तुल अरीज है परम परमीश है समस्तुल अधीश है अधिशुल अलेख है हमीसुल अपेख है समीनुल जमा है अमी कुल इमा है करीमुल कमाल है के जरूरत जमाल है के अचलंग प्रकाश है के मितो सुभाष है के अजब स्वरूप है के मितो विभूत है के मितो पसा है के आत्म प्रभा है के मितो पसा है के आत्म प्रभा है के अचलंग अनंग है के मितो अपंग है मत पार चंत्व प्रसाद मुनमन प्रणाम गुनगन मुदाम मरवर अगंज हर नर पर पांज अनगन प्रणाम मुनमन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनुभव अनास मुनमन प्रकाश गुनगन प्रणाम जल थल मुदाम अंचेज अंगु आसन अपंग उपमा पार गतमित उदार जल थल अमंड दिस विश अपंड जल थल महंत दिस विश बेअंत अनुभव अनास त्रितर तुरा साजान बाहु इक्कै सुदाहु ओंकाराद कथनीय नाद खलखंड खयाल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अंचिज गात आजिज न बात अंचंज गात अनरंज बात अन टुट भंडार अंड टपार आडीठ धर्मत टीठ करम अणबरण अनंत दाता महंत हर बोल मना चंतव प्रसाद करुणालय है अरकालय है खलखंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्ववारण है त्रित के तरण है जग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वंग पर है सर्वंग कर है सर्वपाश्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विषम पर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंड से कलखंड से परते पर है करुणा कर है अजपा जप है तपा तप है कृता कृत है मृता मृत है अमृता मृत है करुणा कृत है कृता कृत है धरणी त्रित है अमितेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत है अमृता मृत है अजबा कृत है अमृता मृत है नरनायक है खलकायक है विश्वम पर है कुरुणालय है नृप नायक है सर्पायक है पपंजन है अर्गंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है पुजंग प्रयाचंद नमो सूर्य सूर्ये नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो रासं ताम संसात रूपे नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पूज पूजे नमो पान पाने नमो कला कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे नादं विपूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे कचरी छंद अजय अलय अपय अवय अपू अजू अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपक काल दयाल अलेख अपेख नाम काम गाह अटाह नाथे परमाथे अजूनी अमूनी नरागि नरंगे नरूपे नरेखे अकर्मंग परमंग गंजी अलेखे भुजंग प्रया छंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निरकामंग विपूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासे सुधर्मंग विपूते सदा सचदानंद सत्रंग प्रणासी
పరిములకు నిందా సుమస్తుల్ నివాసి అజాయ విభూతి అజాయ గణిమే హరియం కరియం కరిముల రహిమే చతుర్ చక్రవర్తి చతుర్ చక్ర పుక్తే సోయం పవ సుభం.

आनंदमई मंगलमई बतीत करवाना गरीब नवाज बेअंत संगतां वलों संगरांद दे दिहाड़े नूं मुख रखदिआं आप जी के चरणा विच अरदासां बेनतियां कीतियां गईयां बेअंत माया अरदास।

तत्पर रखना सतगुरु जीओ रहमता करनिया अपने टहलियां दे सिर ते मेर भरिया हथ रखना काम क्रोध लो मोहंकार तो बचाउना भावना अदब सहत अपने दर घर दी सेवा दे योग कर लेना हर मैदान फतेह बख्शिश करनी गरीब नवाज समूह संगतां।

विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फिर जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड विडानी विस्माद धरती विस्माद खान।

0: चार नदरी कर्म लंघाए पार को चरखा चक्की चक थल वारो ले बहुत अनंत लाटू मधानिया अनगा पंखी पौंदिया लैना सा तुए चढ़ पवई अजंत नानक पौंदिया गणत नान
1: बंदर मन पवाए सोए कृत नचे सब कोई नच नच हसे चले से रोए उड़ न जाए सदना होए नचन कुदन मन का चाओ नानक जिन मन पाओ तिन

चार बंदे से जे पवे विच बंदी वेखण को दीदार हिंदू साला ही साला हंदर्शन रूप पार तीर्थ ना वैर चा पूजा अग्रवास बहकार जोगी सुन ते अवन जेते अलख नाम करता सुख मूर्त नाम निरंजन काया काकार।

मिट्टी मुसलमान की पीड़े पे कुमार घट पांडे टांकियां जल्दी करे पुकार जल जल रोए बपड़ी चढ़ चढ़ पव्यंग्यार नानक जिन करता है कारण किया सो जाने करतार पौड़ी बिन सतगुरु कने न पायो।

0: जदी सदा वै जुगत न जाने छट बह करबार सबको पूरा ते होवे कट न कोई आख पत परवाना पिछे पाई है ता नानक तोलिया जापे महला पहला
1: जदी सोज ज्ञान का सच्चा विखे सोए सब निशाला मारियां करता करिस होए अगै जात ना जोत जोर अगै जियो नवे जिनकी लेके पत्त वे चंगे से ही के पौर तुर कर्म जना कुत पाया।

छली चंद्रावल कान कृष्ण जादम भया पार जात गोपी लै आया बिंद्रावन में रंग किया। कल में वेद सरवण हुआ नाम खुदाई अलह पया नील वस्त्र ले कपड़े पहरे तुर्क पठानिया।

0: उड़ रहिया भरपूर
1: मत्थे टिका तेल धोती खाई हर जगत का साई नील वस्त्र पैर होए प्रमाण मलेश तान ले पूजे प्राण अपा क्या का पुठा बकरा खाना।

सुंदर सुगर बेअंत पिता प्रभु हो प्रभु कृपाल रहाओ महा आनंद मंगल रूप तुम्हारे बचन अनूपर साल हृदय चरण

आठ पहर गुण गावूं, स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा मध्यंत प्रभ जापन। नानक रंग लगा परमेश्वर बहुड़ जन्म ना छापन, तनासुरी महल्ला।

तही प्रकाश हमारा पयो, पटना शहर बिखे पौलयो। तन तन साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज साहिब कमाल, जिन्हां दा प्रकाश पुरब सारे संसार दे विच बड़ी श्रद्धा भावना नाल मनाया जा रहा है, मना रहे हां। कलगीधर पिता जी जदों साहिब जी दा आउणा पटना दी धरती ते साहिब जी दा प्रकाश होया ते कहिंदे ने